आगा तस्ता गंडो ये चतन जीवा सरकारी तभी माने गोला सरकारी को सब क्या एक पैसों ने क्यों तंज को गोसल डायन को इच्छी के बिरे एक तुकल चतन जीवा ये में थे को तो कुम अनन कुमा इन गोलो तुने तक तो गोला कुंडो चिन मिनिस्टर नाचने बारीप से तब काले तेरे में तो ये कुछ चंबा मुर को मैंने कमुआ अकमुआ गंडो ये चतन गोले की गोसल डायन सरकारी नाचन बा प्रेसिडेंट विलियम रूटा पैसों ने के चांगी बात अतिक से तब और अतिन्वे गेन के बिरे एक तुकल चतर तेर इन इमेज कमु गोल आगो तोर्चिंगे वनप्ता पांडप्ता इन नाचने ने बा इमेज Echotan jitab kwa njini kwa la kitu kilugu yigabe mechikita stagi sibi in nuwagindo asingu itasa itamanoga ingi buunjuta nagala kechangin kwa indo tasta epchita jifem tuketab kwa njini kaine nyunko webster korire.

मगर बगा मोदी लगे ने वहाँ मगर हमारा जो अगले बाद इस वे सिसे बिखे तू बीबे अम्म ये जितने बेहतर दरबार सीबीए देखा साले के बीच रंगाए बिचारे ने एयर टैच एक्सप्रेस फ्राइडे एडिशन

चिचेनिक चुगुल कसरता रोग चिन्वगेन कुनी तो उसको इचप चिगे गोल से थी नहीं ले पेतू तक चुगुल खबोगा मनुत इन कसरुए चुचन ये कैसे भी गोल से आगे मीन के सुए चनन को मुचे तने ने के नबो इगस रुद चमियाच को अब तीन देत ने तीन गुल गतियत को गोल के सुए चबुआने इन जोकिनेट अब जे मंगे मेगे मेउज चौतन को अराका WH11 अक हराका WH301 चुतरे का सरता भी तुसिक दिसाइनी अब वे बोगा लगेंगे अक्टिव टेम गित्योग असीगस कंबुनी ता वेस्टर्न सीड को तुने के सुए अलग हु अमेरिका 403 चीबे का सरता ने नुआच असीगस अगुबुआ ने गोगोरोन कुन्यली लेन अमेरिका 505 चिमंगे में म्यानुआ गे अगुन रूद चेमियाच अमेरिका 507 चितिने मोबे चेगी मेन अगुन्यली लेन गुबोतो गोगोरोन इन साइलेज अमेरिका 508 चिगेसे ने बांडे के चांग अगुन रूद चेमितन बराग मेन को सिरिन का सारे तन बरो ऑप्शन नुआच केरी इलेगे बाइसिन के स्विच या नो तीन गुबुन वेस्टर्न सीड मेज रूटेजन राइनी अग्रोडीला Agrovet distributor to Pande and Uncoke V outlet Tagatugul Nenegitinin. In table Tagatugul, Ibisimet Kwa number 0705-505-505 and an EFG to do the tab, Meseta Tajafim. Western City Company bringing technology to the farmer.